जो जलपाथा नेपाल सम्बत चिन्छ सौ पी खुद चतुर्थी थु रेडियो नेपाल खा निनादिसा जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार देनिङ हनादुमा येले हनीगु वर्षा सहकाल्य ड्य कथ हनादुमा ये या येलया करुणामय या ख या त मिग लगन ख या ठटी त्वालनशाला जाउला ख्य ठ्याङ्क गुदु वङ्गु वैशाख अठार गते शुक्ल प्रतिपदा निसे ख शालिगु शुभ सायद कथा लगन ख या ठटी त्वा ले दिका तमा ख या त साल मिग जाउला ख्य ठ्याङ्क गु ख नेपाल फुक्क सोय तहागु ख या त मिग जाउला खेले ठ्याङ्कानी फुक्क चिबे तहागु नख या ख शालिगु जात्रा पुङ्गुदु थोए असार छ गते पकल पाँचा किने धुङ्कानी थुगुसिया करुणामय जात्रा कोचाई सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

अल्सिना देनिङका दूरसञ्चार सेवा या गुणस्तर वा पहुँच तव्या के त अझ उप झिङखुस टेलिफोन टावर वा स्वपुदुको पूर्वाधार साइट देखे गुज्या निजाका चुनागु कना दिल युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव सुङ्गु तहया सरकार नपाया सहकार्य संस्वदेश लजगा या वाता बोलङ्की गुज्या या त सरकार जुया जनागु तया दिगु दुसा प्रतिनिधि सभा मन्त्रालय गत विनियोजन छुया सल संसदेशङ्गु विशेष लिस बिया दिस श्रम मन्त्री यादव आन्तरिक लजगा बोलङ्केको नीति वैगु दशक यता डिकेट अफ द नेसनल इम्प्लोयमेन्ट प्रमोसन या कथा घोषणा या नीतिगत तयारी जुइगु धया दिल उद्योग वाणिज्य वा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी पेट्रोलियम पदार्थ या भण्डारण मुक माग या सोला या त माघको दैगु जोसाना क्षमता तपाईँ के गु आजु कथन ज्याना चनागु धया दिगु दु विनियोजन विधेयक दथिया सलसन संसदेशन लुङ्गु नेसाली सबिया दिसे मन्त्री गौरी कुमारी बन्द चुया चोङ्गु सेना चोङ्गु उद्योग न्याकेता उत्पादन उपका लजगा बुलङ्के त आपला छेजया नाचनागु धया दिल छ वैक्ल सेना चोङ्गु उद्योग न्याकेगु झोले फुक्कन सिबेन हापा हेटौँडा काप उद्योग न्याकेगु व उकिया नीति बुटोल सुका व कपा बुजा या त छक्लन्तु झ्याकेगु याना थ्या बिया थुगुसी साय न्याकेगु छेजया नाचनागु धया दिल अध्ययना विनियोजन विधेयक दथिया सलसन सांसद तेसन लुहङ्गु नेसया लिसन कृषि मन्त्री चौधरी कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी सांसद तेसन लुहङ्गु नेसया लिस बिया दिसे कृषि मन्त्री चौधरी कृषि लागा या विनियोजन बजेट या अथे हेङ्याको प्रतिशत शिवे उप बजेट सञ्चित हङ्गु किसान तपेङ्क लवकाइगु याना ज्यायागु थया दिगु दुस संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडगराज पौडेल समाज या कुएसोङ्गु वर्ग या त नापा पर्यटन सन् लवका फैगु विशेष विनियोजन विधेयक पाखे ब बिगु थया दिगु दुस स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहता वासयता तपेङ्क व अपुगु कथ सकसिना का फैगु याना समायोजन स्वचालित प्रणाली देखे त छवा दुने प्रक्रिया निजा किगु बचा बिया दिगु दुसा प्रतिनिधि सभा संविनियोजन विधेयक दथ्य सलसा सांसद पिसन होङ्गु नेसा लिस बिया दिसे मन्त्री मेहता वासया हाठ्या सधाया नीति ढङ्केगु याना ज्या निजा के त सनागु खना दिगु ख अध्ययना भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल न मसिका दुपी भूमिहीन सुकुम्बासिया त असार्य सवा निसे लालपुर्जा इने गुज्या न्याकी गु बचम बिया दि गु दुस मन्त्री रावल न निजामती कर्मचारी नापाया विधेयक आराय नीति कानुन मन्त्रालय दुगु व कर्मचारी तेगु उमेर हत नापाया फुक्कम विशेष सल सहेलिपाङ्गु लिचोखे थेङ्केगु धया दिगु दु महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीतावादी समावेशी सुरक्षित व मर्यादित समाज देखे त मिसा बालबालिका अपाङ्गता जुपी मनु थकालिपी बुढाबुढी लैङ्गिक व यौनिक अल्पसंख्यक व सीमान्तकृत समुदाय संरक्षण सशक्तिकरण व सामाजिक सुरक्षा त केन्द्रीयतया बजेट भिङ्किएको ध्या दिल प्रतिनिधि सभा मिगया बैठकले मन्त्रालयले गत सलसलुङ्गु विषयता मन्त्री विष्ण लिस बिगु झो सिधे धुङ्कानी ठाउँ विनियोजन विधेयक 2083 या त पारित याइगु ज्याधल दुत हुया प्रतिनिधि सभा मिगया बैठकले संसद त्यसमा चिया निर्यात वास हो जुगु विषय यस सरकारले ध्यान कोसला दिगु खसा सांसद तेसङ गुणस्तर परीक्षण या नामे भारत नेपाली चिया निर्याते हाठ्या बोलङ्क गुहुने देशे चिया उद्योग बन्द जुइ त सङ्घुले थत्ते जी टु जी प्रक्रिया पाके हाठ्या नङ्के त बिया दिल सांसद तेसन देया थिति अस्पताल तेके क्यान्सर लोया लोगी तेगु वास मो जुग विषय या त याक्न नङ्के त माग्याना दिगु दुस बाली बिमा प्रभावकारी मजुया किसान त्यता हाट्या बोलाना चोङ्गु दास किसान मन्त्री बाली बिमा या व्यवस्था या मागु इलेहे सा या प्रभावकारी व्यवस्थापन माको किट माको कथा कोटा प्रणाली व्यवस्था या मागु माग्याना दिगुदु प्रतिनिधि सभा या ठाउँ या बैठक के धासा प्रतिपक्षी दल या संसदेसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बिया दिगु नेपाल भारत सीमा नापाया नोचु भिङ्केता ओ संसद रेकर्सन चिकेता माग्याना दिगु ख प्रतिनिधि सभा या मेगु बैठक ठाउँ सुते अले चिन्छ त अहिले चुनिगु गोसादु उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव नपा नेपाल नीति रुसी महासङ्घ आवासीय राजदूत एलेक्सी भ्लादिमिरोविच

नाप्लाना दिगु दु उपराष्ट्रपति कार्यालय मेघ जुगु नाप्ला च्यावै कपिन दि नेपाल व रुस दथिया निगु देया थिथि विशेष खलाबला जुगु उपराष्ट्रपति कार्यालय धागु दु नाप्ला ज्याजु दति सुरूप सेव नेपाल रुस स्वफियात अञ्च सेल्ला किता मज्जिक ग्वालिया गु व रुस नेपालिया जलविद्युत कृषि चिकित्सा व भौतिक पूर्वाधार नापाया लागा ग्वालिया तयका गु थया दिगु दु अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ने सरकार निजी लगायता ने दैगु लकस बोलङ्किता व लगानी मैत्री लकस देकेता प्रतिबद्ध जुयागु ध्यादिगुदु नेपाल चेम्बर अफ कमर्स मिगये घोषाको इतिहासले अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्ले सम्पत्ति शुद्धिकरण व सम्पत्ति छानबिन या नामे व्यवसायी याता महामधुको कथन दुःख बिगु सरकार या छुन आज मधुको ध्वाथ्विका दिशे गैर कानुनी कथन सम्पत्ति मुङ्की गु व राज्य याता सेङ्की गु व सेङ्कीमा मनुया त जक्क कारवाही आएको ध्या दिल अर्थमन्त्री डाक्टर वागले निजी लगायत ग्वाली ठेङ्कीगु याना वैगु मौद्रिक नीति हेगु जानकारी बिहा दिशे अर्थतन्त्र या त चलायमान देखे त सरकार व निजी लगायत सहकार्य मागु ध्या दिल सेयर बजारे छु विचलन खने दुसाना थुकिया त व्यवस्थित विश्वासिलो देखे गु लम्फु सरकार ज्याना चुनागु नेतना दिशे वैग्ला आर्थिक गतिविधि या त प्रोत्साहन यागु नीति छिलागु कना दिल जहाजले बोती कापी व्यवसाय पिसा लगानी मैत्री लकस नीतिगत स्थिरता कर सुधार व निजी लगाया मनोबल थकाएको ज्याचो छेलाबुलाई या त बिगु ख शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल विश्वविद्यालय शिक्षा ता यी कथम प्रविधि मैत्री ओलजकामुखी देखे त सरकार थ्या बिया ज्याना चुनाको ध्या दिगुदु मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय दीक्षान्त ज्याजु या त मिग सुर्खेते क खाना दिशे मन्त्री पोखरेल उच्च शिक्षा त श्रम बचार या माग नापा स्वाईगु याना पाठ्यक्रम भिङ्के गु थुकिया नीति मागु बजेट पूर्वाधार व दक्ष जनशक्ति व्यवस्था या त सरकार प्रतिबद्ध जुयागु ध्या दिल मन्त्री पोखरेल कर्णालीय प्राकृतिक सांस्कृतिक स्रोत अध्ययन अनुसन्धान या त विश्वविद्यालय थ्याबी मागु बिचा पङ्का दिल मन्त्री पोखरेल शिक्षा राष्ट्र निर्माण या महत्त्व जागो लिधान्सा जुगु नेताना दिसे वोगु ज्ञान वो शिप मनुया सफलता या जक मजुसे समाज व देय विकास या नीति छेलाबुला जुइगु कना दिल सरकार दे वो विदेशे दुपी नेपामी मनु त्यता राज्य पलापत्तिक तपेङ्क स्वाइगु डिजिटल प्रणाली नागरिक चौतारी न्याकेगु न्याकिगु जुगु दु नागरिक चौतारी पाखे मनु तेसँग सरकार या त तपेङ्क राय सूचन बित मिलेजुगु डिजिटल प्लेटफर्म या नापाङ्गु बेटा संस्करण सार्वजनिक यागु ज्या यानागु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद कार्यालय धागु दु अथियाना नागरिक चौतारी डिजिटल प्लेटफर्म नापा देन्याङ्कया मनु नापा प्रत्यक्ष इन पर्सन ज्याजो पाखेन स्वाइगु ज्यायाना चुनागु मन्त्री परिषद कार्यालय थागुदु सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजन अतिथि इले यागु उपकरण व प्रविधि यागु प्रक्रिया या अध्ययन नापा छानबिन या त पेमा दुजया समिति निसङ्गुदु मन्त्री स्तरीय निर्णयसँग डाक्टर सुदीप भट्टराया समजकते निसङ्गु पेमा दुजया छानबिन समिति या त नेपाल टेलिभिजन खरिद यागु थिति उपकरण सफ्टवेयर व डिजिटल प्रणाली नापा स्वापुदुगु उजुरी प्रतिवेदन व सार्वजनिक यागु विषय तेगु तथ्यपरक अध्ययन याना नि छनु दुने सूचना नापा प्रतिवेदन मन्त्रालय दुत बित तया तगुदु विशेष अदालत सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरे दीपक भट्ट व सुलभ अग्रवाल या त पूर्वक्षा नीति कुनै त आदेश बिगुदु विशेष या अध्यक्ष सुदर्शन देव भट्ट व सदस्य पी उमेश कोइराला विदुर कोइराला इजालसम्म भट्ट व अग्रवाल या त कुनै त आदेश बिगुख आदेश कथन निमसिता कारागार कार्यालय डिल्ली बजार छोत सङ्गुदु विशेष अदालत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्या अन्य पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम या त पूर्वक्षा नीति कुनै त आदेश बिगु दुस विशेष अदालत या तत्कालीन महानिर्देशक गौतम थगु पदे दुब्ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनियमितता व हिनामिना यागु दोपस पूर्वक्षा नीति कुनै त आदेश बिगु ख
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन दक्षिण अमेरिका व इजरायल इरान विरुद्ध निहाका चङ्गु लुवाफु नङ्केको विषय छगु ऐतिहासिक समझदारी पौष विद्युतीय माध्यम सल्लाह चिन्त अगुदु निगु पछ्यन्थो सम्झौता थत्यन छेलिगु घोषणा याद हुङ्कु दुसा अमेरिकी अधिकारी तेगु कथ थो सम्झौता इरान आरबिक लुवाब विकास खरिद मयाइगु फुक मोर्चा न्याका तगु लुआफु नङ्केगु रणनीतिक कथा महत्व जागु स्टेट अफ हर्मो जलमार्ग च्याकी मागु थलत दुथ्याका तगु दुसा थोए दति हिजबुल्ला प्रमुख नाइम कासी मथो सम्झौता छगु त धङ्गु त्याको सा जुइगु ओलसकु सान जागु धया दिगुदु आकाशा जानकारी फिफा विश्वकप 2026 कथम वङ्गु चाने थौ सुथे समूह के व समूह यल या कासा त पुङ्गु दु फिफा न्याकगु आधिकारिक कासा धल व लिचो कथम वङ्गु चाने जुगु निगु कासा पूर्व विजेता इङ्ल्यान्ड या इङ्ल्यान्ड क्रोसिया दति पेङ्गु दुई गोल दर्ता त्याकुसा कथन दर्ता यकगु दुसा थतियाना वङ्गु चाने जुगु के या मेगु कासा पोर्चुगल या त अफ्रिकी राष्ट्र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो छौ छगु गोल्या बराबरी दिकगु दु थोए दति थौसुते पुङ्गु यल या मेगु कासा खाना उत्तर कोरिया उत्तर अमेरिकी राष्ट्र पानामा दति ट्याकुसा लाते लाकगु दु टोरन्टो स्टेडियमे जुगु कासा खाना पाना या त छगु शून्य गोल या अन्तरम बुकगु ख रक्षात्मक कथ बल्लागु खने दुगु पानामा विरुद्ध खाना निकगु हाफे निर्णायक गोल या से कासा थगु पछे कागु ख आ मौसमीय जानकारी थौ कोशी प्रदेश हिमाली पहाडी लागा या मोथासे व बागमती लुम्बिनी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमाली व पहाडी लागा छगु निगु थासे व कोशी मध्य प्रदेश तराई लागा मलनापा लाप्सा तोया भतिचा वा वया चपु कुहा वैगु सम्भावना दुसा बागमती व गण्डकी प्रदेश तराई लागा कुवाइगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्थागु दु वङ्गु निपेघ दुने सुई छगु फुटी सोङ्गु डिग्री सेल्सियस जति सोनिक लुया वोगु क्वाज थौदासा निङ्यागु निसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस तक क्वाइ थौ ये सोनिगले न्याता इजुया निगु मिनेटे खने दुगु निबान हेता इजुया गुगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिसा शुभ

लसे मलोक झेंगे तुई से नंगुप्लुती लाखपा सेरपा आमोद की ला नंगुप्लुईन ता शेरपी के की कोरला तम्ये तियो जोकु रिमाला रंग तंदा न्योमिन डोप ने तंग ओतुब दक्पी शेरी की ला चुक्याने एरगे तोंगो की तंग सुन्क्योप की गो की सिरुप कोरला संग झेंगे तुला टिक पेसिक शोप तेरिस नंग गमला ती दक्पी शेरी की एरगे तोंगो पिनसिंग दक्पी खांगबाने रंग दिला कती गोचुगो की सिला सिसिंग तेरिस नंग गमला दक्पू रंगी रंग लोबगो की तंग ती तिंगला प्याजा तेवला संग लाम तेरगो की सिने झेंगे मिमांग तेवला शोबिन तक्स नंग गोमशोकला दक्पी पेजी की लापू दासाती खाङबारङ हिन्दुप थप कि खाङबा पापा हामी कि लाप्सिङ लाप्सुङ सिसिङ तिथि ससे ल्यावाइन चिल सिसिङ पापा हामी लाम्बी दुप्ती पेजी मेजेउतङ गेटपुगल्सीमासँग गेटपुगल्सीमा लापुती लापुती सिन टिक्वे लापुती तिङला सेक मेजेउतङ सिक्तिवासँग ससे तम्बुगिनु तिङला लोप्टोला घन लापुती चाहिँ खेपरसँग घिनो तुक्याने रेडियो से नङ्गिन जुनु तु लेङ्गे थियो होला देख्पी प्याजा थियो होला सेरी तमियाती खाङबाने रङ टिक्पेना जुनङ लाम्तेरको कि तङ तिथि ससे ल्यावा घिनो सिने लेङ्गे थियो होला स्योबिन त पापा आमा त्यो सेरी तमिया रङ मासे सिनङ तन्द लोपु दासा त्यो भङ्गी सङ गु चुनु धुप तप कि लोपु नासम ती होसिङ दक्पी सेरी तमिया लोपुलाई अलग कले ती मेतु धके रङ थोङ्गिनु सिला सिसिङ तन्द दासा भङ्गी नै कि दुख्थ्यो झिन्क्योङ क्यान हो तुप तङ खोङ ती तुसो तुसोला दि सेर्वी के लाम त्यो रूप ल्यारिम त्यो झिन्क्योङ कि हो तुप दक्पी यम्बु शेर्पछि सो कि सङ नरी जपेम बिसेर्मु अनलाइन थिएमा सेर्वी के लाम तेरिन हो तुप तङ जम्दिङ शेर्पछि सो कि सङ शेर्पा ओल्ड सिने सेर्वी के लोपु एप चिक जोन हो तुप लेङ्गे दक्पु तेरि

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासँग सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। प्रतिनिधि सभाकै आजको बैठकमा विपक्षी दलके सांसद सब स्वयं सब उठाउने विषयमा सरकारकै सुनवाई नै भेल कहित असन्तुष्टि व्यक्त कैलने छ। बैठकमा विपक्षी दलके सांसद सब विरोध जनाउलाक बाद सभामुख डोल प्रसाद आर्याल धारणा राख समय उपलब्ध गराउने छले। यही अवसर पर सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङ प्रधानमन्त्री संसद मे उठाउने राष्ट्रियताके विषय सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन आ मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायत विषयमे बेरबे ध्यान आकर्षण गराउने बावजुद ओहिके सुनवाई नै भेल शिकायत कैलन। सांसद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता आन कूटनीतिक पहल तीव्र बनाएल जेबाक चाही पर जोड दैत जेठ 17 गते प्रधानमन्त्री दिने अभिव्यक्ति फिर्ता हेबाक चाही माग कैलन। सांसद रमेश कुमार मल प्रतिपक्षी दल संसद उठाउने प्रश्नके उचित सम्बोधन नै हेबा सन्केने कहिका दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिके संसदके अभिलेखसँग हटाल जेबाक चाही धारणा राखलन्। ओ लोकतन्त्र आ संवैधानिक व्यवस्था कमजोर हेबाक अवस्थामे रहलासँ अइ दिस सचेत हेबाक चाही पर जोड देलन। सांसद ऐन महर संसदके गरिमा कायम राखब सांसद आ सरकार दुनूके सजिया दायित्व भेल बतौलन। सांसद हरकराज राई भूटानी शरणार्थीके माग आ समस्याके उचित सम्बोधन करबाक लेल सरकारसँग आग्रह कैलन। सांसद ताहिर अली भाट पेट्रोलियम पदार्थके मूल घटाब माग करैत बढ़ल ईंधन मोलके आम उपभोक्ता उपर थप आर्थिक भार पड़ल बतौने छलथि। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल संग नेपालक लेल संयुक्त अरब एमिरेट्स के राजदूत अब्दुल्ला जरवान अल शमसी आइ शिष्टाचार भेटवार्ता कैलने। भेटघाट के क्रम में नेपाल यूएई बीच के द्विपक्षीय संबंध संसदीय सहयोग व्यापार लगानी पर्यटन श्रम हवाई सेवा प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता लगायत के विविध विषय में विचार विमर्श भेल छल। सभामुख आर्याल यूएई नेपाली श्रमिक व्यापार तथा लगानी के दृष्टि से नेपाल के महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र रहल चर्च करे दू देश बीच के आर्थिक तथा विकास समझदारी के थप विस्तार करबाक आवश्यकता रहल बतौलन। ओ यूएई के वीजा प्रक्रिया में नेपाली नागरिक से प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य रूप में मांगल जा वाला व्यवस्था के पुनर्विचार का सहज बनेबा लेल अनुरोध कैलन। सभामुख आर्याल नेपाल सरकार अखन सार्वजनिक केने शासकीय सुधार के सय कार्य सूची मार्फत सेवा प्रवाह के थप प्रभावकारी पारदर्शी डिजिटलाइज्ड तथा नागरिक मैत्री बनेबाक दिस कार्य आगू बढ़ाने जानकारी दिलन। सभामुख कार्यालय आवावला सेप्टेम्बर 23 तारीख से पोखरा दुबई पोखरा दैनिक सीधा उड़ान संचालन करबाक लेल स्वीकृत प्राप्त केने प्रति खुशी व्यक्त करैत ऐसे पोखरा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई संजाल संग जोड़ में महत्वपूर्ण योगदान पहुँचत से विश्वास व्यक्त कैलन। संगे दुबई भई रहबा दुबई उड़ान पुनः संचालन के संभावना के संबंध में सेहो विचार करबाक लेल आग्रह कैलन। प्रतिनिधि सभा के किस दिन पहला ही भेल निर्णय हिसाबे संसदीय मैत्री समूह गठन कैल गेल जानकारी करबैत सभामुख आर्याल ऐसा दुनू देश के संसद बीच भ्रमण अनुभव आदान प्रदान तथा संसदीय अभ्यास के साझेदारी के थप सुदृढ़ बनेबाक विश्वास व्यक्त कैलन। भेटघाट के क्रम में राजदूत अल शमसी नेपाल यूएई संबंध मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण बहुआयामिक रहल चर्च करैत व्यापार लगानी पर्यटन ऊर्जा प्रविधि तथा जनस्तर के संबंध के थप मजबूत बनाबा यूएई सरकार सकारात्मक रहल बतौलन। ओ नेपाल संघ के सहकार्य विस्तार तथा पारस्परिक हित के क्षेत्र में थप अवसर के खोजी कैल जेबाक विश्वास व्यक्त कैलन। गृहमंत्री सुदन गुरुंग मनसूनजन्य विपद व्यवस्थापन के सरकार उच्च प्राथमिकता में राखि तैयारी कर रहा बतौलन। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आयोजना के ने मनसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य संबंधी बैठक में सहभागिता पश्चात संचारकर्मी सब संग बातचीत करत वही बात बतौलन। वो बाढ़ भूस्खलन लगायत प्राकृतिक विपद के घटना में नागरिक के सुरक्षा सुनिश्चित करवाक लेल हेलीकॉप्टर से लकर सुरक्षा निकाय के सब स्रोत साधन परिचालन करवाक जानकारी दिलन। विपद व्यवस्थापन के लिए सुरक्षा निकाय सब परिचालन कैल गेल औपचारिक निरीक्षण से नागरिक के प्रत्यक्ष सुरक्षा उद्धार कार्य के केंद्र में राखि काज करबाक बतौलन। विपद व्यवस्थापन के लिए अगला सरकार के ने सकारात्मक काज के निरंतरता दैत कमजोरी सबके सुधार कर आगू बढ़वा के नीति लेल गेल ओ कहलन। मानसून के समय पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायत निर्माणाधीन सड़क खंड सब में बाढ़ आ भूस्खलन के कारण यातायात अवरुद्ध भ सकबाक जोखिम के मद्देनजर करैत गृह मंत्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय संग समन्वय कर रहल ओ जानकारी दिलन। हुनक हिसाबे सड़क अवरुद्ध हटाबा आवश्यक डोजर तथा उपकरण कतः कतः उपलब्ध अछि के जानकारी देवा में विशेष डिजिटल प्रणाली ऐप विकास कैल जात। अ प्रणाली मार्फत कोनो स्थान में
भूस्खलन वा सड़क अवरोध भेला पर नजदीक के उपकरण तत्काल परिचालन क सड़क खुलाब के व्यवस्था मिलाल गेल ओ जानकारी दलिन। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण भ रहल आधारहीन एवं भ्रामक विज्ञापन तत्काल हटाव विज्ञापन बोर्ड निर्देशन दलक अछि। संगे एहन विज्ञापन प्रसारण कयने भेटल गेला पर कड़ा कानूनी कार्रवाई करबाक सेहो बोर्ड जनौलक अछि। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ रहल भ्रामक तथा झूठ विज्ञापन उपर कार्रवाई प्रक्रिया आगू बढ़ावा सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा संबंधित निकाय के निर्देशन सेहो देलनि। संचार मंत्रालय के इच्छा पश्चात विज्ञापन बोर्ड आई सार्वजनिक सूचना करैत प्रचलित कानून निषेध केने आवश्यक लेबलिंग ब्रांडिंग तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नहि भेल दवाई जन्य पदार्थ तथा सामग्री के विज्ञापन सामाजिक संजाल में बढ़त गेल कहैत एहन गतिविधि के तत्काल रोकबाक लेल निर्देशन देलक अछि। बोर्ड विशेष का केस उगाबा वाला अहिना केस के लंबा करा वाला हड्डी तथा नशा संबंधी पीड़ा निक करा वाला शरीर के बोसो घटाबा वाला गुर्दा सफा करयवला आ शरीर के विषाक्त पदार्थ हटाबला लगायत दावी कयल गेल। दवाई जन्य पदार्थ तथा अन्य समान प्रकृति के सामग्री के प्रचार सामाजिक संजाल मार्फत व्यापक रूप में भ रहल जनौलक अछि। एहन सामग्री के प्रभावकारिता के संदर्भ में वैज्ञानिक आधार आधिकारिक स्वीकृति तथा आवश्यक प्रमाणीकरण बिना आकर्षक प्रचार सामग्री तैयार कर सर्वसाधारण के भ्रमित बनाबे वाला कार्य बढ़ रहल क्रम में बोर्ड उल्लेख कयलक अछि। सूचना में विज्ञापन नियमन करबाक अहिं 2076 के दफा 5 तथा अन्य प्रचलित कानून विपरीत कोनो विज्ञापन प्रकाशन व प्रसारण नहीं करा तथा नहीं कराबा संबंधित विज्ञापनदाता विज्ञापन एजेंसी सामग्री उत्पादक विक्रेता डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालक तथा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता सहित सब पक्ष के सचेत करौलक अछि। कानून विपरीत के विज्ञापन उपभोक्ता के स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आर्थिक हित में प्रतिकूल असर पहुँचौला सँ एहन गतिविधि में संलग्न नहीं होबय लेल बोर्ड आग्रह सेहो कयलक अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम अदालत तोकने समय सीमा भीतर फैसला कानून कायल जेबाक दृढ़ता व्यक्त कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 ऊपर के विचार विमर्श में उठल प्रश्न के जवाब दैत ओ फैसला कानून में देखल गेल कानूनी प्रक्रिया के तथा संस्थागत जटिलता हटाबा पहल कायल जेबाक बतौलनि अछि। सांसद भरत प्रसाद पराजुली सर्वोच्च अदालत से भेल आदेश तथा फैसला के प्रभावकारी कानून सुनिश्चित करबाक लेल सरकार के स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त करबाक लेल अनुरोध केने प्रश्न के ओ जवाब दिलनि अछि। नेपाल के संविधान के धारा 126 अदालत से भेल आदेश तथा निर्णय के पालना करत सब व्यक्ति संस्था राज्य निकाय के अनिवार्य संवैधानिक दायित्व भेल व्यवस्था केने अछि। मंत्री गौतम विधि के शासन में आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायालय के आदेश के सम्मान आ कार्यान्वयन राज्य के उत्तरदायित्व के मूल आधार अछि। एहि विषय में सरकार पूर्ण रूप में प्रतिबद्ध रहल बेहोरा जानकारी कराबय चाहै छी से कहलनि। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल एहि वर्ष आर्थिक कूटनीतिक सौम्य शक्ति प्रवर्धन सहित के काज के प्राथमिकता में राखल गेल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 अंतर्गत परराष्ट्र मंत्रालय के शीर्षक पर उठल प्रश्न के जवाब दैत ओ आर्थिक कूटनीतिक सौम्य शक्ति प्रवर्धन प्राथमिकता में राखल गेल जानकारी देलनि। नेपाल सरकार नेपाल के संविधान परराष्ट्र नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्थापित मान्यता प्रति प्रतिबद्ध रहे सुशासन आर्थिक समृद्धि हासिल करबाक दिस प्राथमिकता के साथ काज कर रहल मंत्री खनाल बतौलनि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव प्रदेश अपने प्रहरी प्रशासन आ कर्मचारी संरचना प्राप्त कर सकला पर सड़क सुरक्षा तथा ट्रैफिक व्यवस्थापन लगायत के काज प्रभावकारी रूप में कह सकते अछि बतौलनि। आई जनकपुर धाम में आयोजित प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यशाला के संबोधन करैत मुख्यमंत्री यादव प्रदेश सरकार के आवश्यक अधिकार आ संरचना नहीं भेला से काज प्रभावकारी रूप में आगू बढ़ावा कठिन भ रहल बतौलनि। ओ प्रदेश सरकार अपने प्रहरी प्रशासन आ कर्मचारी संरचना बिना अधिकार विहीन जेहन बनल चर्च करैत संघीय संरचना उपर प्रश्न उठलनि। कार्यक्रम में श्रम तथा यातायात मंत्री शारदा देवी थापा सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए जनचेतना विस्तार अत्यावश्यक रहल बतौलनि। ओ विद्यालय तह में ट्रैफिक नियम के संबंध में शिक्षा देल गेल अभ्यास के सकारात्मक रहल कहित आबय वाला दिन में महिला समूह तथा समुदाय स्तर में सचेतना कार्यक्रम विस्तार करबाक चाही पर जोर दिलनि। नेपाल के मुख्य बाली धान रोपा के समय में रासायनिक खाद के अभाव में किसान सब प्रभावित भ रहल समय अधिक परिणाम में एक महीना भीतरे रासायनिक खाद नेपाल आवा लागल अछि। सरकार समय में खाद के आपूर्ति के लेल कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड आ नेशनल ट्रेड लिंक के तागेदा कयने कर रहल समय मध्य पूर्व में उत्पन्न तनाव के कारण आयातित खाद बीच बाटे में रोकेला से समस्या उत्पन्न भेल अछि। अमेरिका ईरान बीच मध्य पूर्व में उत्पन्न तनाव के कारण हरमुज बंदरगाह में अधिक परिणाम में ईंधन तथा खाद आ लगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ रहल पानी के जहाज से महीनों से रोकायल अवस्था में आब शांति वार्ता पश्चात समझौता संगे संचालन में
अयलाक बाद नेपाल चीनसँग खरिद केने लगभग 1,60,000 मेट्रिक टन सँ अधिक परिणाम रहल यूरिया डीएपी रासायनिक खाद आब नेपाल आयत। आब खेल समाचार। इंग्लैंड आ घाना के फीफा विश्वकप 2026 में विजयी शुरुआत रहल अछि। समूह एल अंतर्गत बुध दिन रात भेल खेल में इंग्लैंड क्रोएशिया के 4-2 गोल से हरौलक। इस समूह दोसर खेल में अफ्रीकी टोली घाना पनामा के 1-0 से गोल से स्तब्ध बनौलक। अमेरिका के डालास रंगशाला में भेल खेल में इंग्लैंड के जिताबक कप्तानी हैरी केन 12वें आ 42वें मिनट में 2 गोल कलन। अहिना जुद बेलेमिंग 47वें आ मार्क्स राशफोर्ड 85वें गोल कलन। क्रोशिया के लेल मार्टिन बाटुरिना 36वें आ पेटर मूसा पहिल हाफ के इंजुरी समय में गोल कलन। सन 1966 के विश्वकप विजेता इंग्लैंड जीत संगे 6 अंक बनौलन त क्रोशिया हार से विश्वकप के यात्रा तय कलक। अना दोसर खेल में घाना के जिताबक कालेव इरेनिक की दोसर हाफ के इंजुरी समय में गोल करत पनामा के स्तब्ध बनौलक। पहल जीत संगे 6 अंक बनौने घाना दोसर स्थान में पनामा हार से विश्वकप की शुरुआत कलक। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा से विनियोजन विधेयक 2083 बहुमत से हुई पारित। समानता और पारस्परिक हित के आधार पर संधि समझौते करने की नीति होने की बात पर राष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने दी जानकारी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा की केंद्रीय समिति को 151 सदस्यीय बनाने के लिए सचिवालय द्वारा विधान संशोधन। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित और प्रसारित न करने के लिए विज्ञापन बोर्ड का निर्देश। और जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन का मॉस्को पर सबसे जोरदार हमला। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा से विनियोजन विधेयक 2083 पारित हो गया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने विनियोजन विधेयक को पारित करने प्रस्ताव किया था, जिसे सभा ने बहुमत से पारित किया। वहीं कुछ सांसदों द्वारा रखे गए विनियोजन शीर्षक पर खर्च कटौती के प्रस्ताव को सभा के बहुमत ने अस्वीकृत कर दिया। इससे पूर्व अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा कि पद और शक्ति के दुरुपयोग से अवैध संपत्ति अर्जित करने की प्रवृत्ति रोकने के उद्देश्य से स्थायी संपत्ति जांचबूझ आयोग 2083 का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग केवल जांच कर सरकार को कार्रवाई की सिफारिश करेगा और इससे संवैधानिक निकायों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय परिचय पत्र को सभी सार्वजनिक सेवाओं से जोड़ने तथा साइबर अपराध नियंत्रण के लिए 50,49,00,000 रुपए के कार्यक्रम की जानकारी दी। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने शिक्षा और खेल क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अधिकतम बजट आवंटित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल शिक्षा, शिक्षक क्षमता विकास और विद्यालय से बाहर रहे बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाने पर सरकार का विशेष ध्यान रहने की बात कही। कानून मंत्री सोभिता गौतम ने संक्रमणकालीन न्याय आयोग का गठन प्रक्रिया आगे बढ़ने और निशुल्क कानूनी सहायता को प्रभावकारी बनाने के लिए एकीकृत कानूनी सहायता विधेयक तैयार किए जाने की जानकारी दी। विज्ञान तथा नव प्रवर्तन विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मंत्री महावीर पुन ने नवाचार और अनुसंधान को आर्थिक उत्पादन से जोड़कर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल ने बहुवर्षीय बजट प्रणाली को प्राथमिकता दिए जाने की जानकारी देते हुए सड़क सुरक्षा, दो लेन सड़कों के विस्तार, काठमांडू को धूलमुक्त बनाने और स्वच्छ पेयजल पहुंच बढ़ाने की योजनाओं की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा कि प्रसारण लाइन और सब स्टेशन निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा अगले आर्थिक वर्ष में 12 रणनीतिक महत्व की प्रसारण लाइनें निर्माणाधीन रहेगी। वहीं पर राष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने समानता और पारस्परिक हित के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाने, सगरमाथा संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित करने तथा प्रवासी नेपालियों की पूंजी, श्रम और कौशल के उपयोग के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के सचिवालय बैठक ने पार्टी के विधान में संशोधन कर केंद्रीय समिति का आकार 151 सदस्यीय बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी सचिवालय बैठक का निर्णय आज सार्वजनिक करते हुए महामंत्री कविंद्र बुरला कोटी ने बताया कि केंद्रीय समिति 151 सदस्यीय बनाने और प्रदेश समिति के संपत्तियों को पदेन सदस्य के रूप में रखने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बैठक में महाधिवेशन से पहले आवश्यकता से अधिक प्रचार प्रसार होने की बात सामने आने पर संयम रखने और पार्टी के चुनाव आचार संहिता व अनुसंधान के भीतर रहकर गतिविधि संचालन करने का निर्देश दिया गया। इसी तरह बैठक में सातों प्रदेशों के अधिवेशन की समीक्षा की गई। ये जानकारी महामंत्री बुरला कोटी ने दी। रासपा महाधिवेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। महामंत्री ने बताया कि महाधिवेशन में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसी आसार 7 से 9 गते तक चितवन में होने वाले महाधिवेशन में लगभग 3,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। विज्ञापन बोर्ड ने सोशल मीडिया के माध्यम से आधारहीन और भ्रामक विज्ञापन प्रसारित और प्रकाशित करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बोर्ड ने आज सूचना जारी करते हुए कहा कि कानून द्वारा निषिद्ध आवश्यक लेविंग, बोर्डिंग और आधिकारिक प्रमाणीकरण के बिना औषधीय पदार्थों और वस्तुओं के विज्ञापन सोशल मीडिया में बढ़ रहे हैं, जिन्हें तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया। सूचना में कहा गया है कि विज्ञापन एन और अन्य प्रचलित कानूनों के विपरीत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए। विशेष रूप से कपाल उगाने, कपाल लंबा या घना बनाने, हड्डी और नसों के दर्द ठीक करने, शरीर की चर्बी घटाने, किडनी साफ करने और शरीर से विषैले पदार्थ निकालने जैसे दवाओं वाले उत्पादों का प्रचार व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् बाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
5: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
6: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने सूचना प्रवाह प्रणाली को प्रविधि मैत्री बनाते हुए एकीकृत आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंध प्राधिकरण में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि मानसून जन्य आपदा पूर्व तैयारी, राजमार्ग की स्थिति, हेल्पलाइन सेवा और आपात प्रतिक्रिया योजना में संबंधित मंत्रालयों और सुरक्षा निकायों के बीच समन्वय और सूचना प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने आपदा पूर्व तैयारी में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और नागरिक सेवा तथा बचाव व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए सुरक्षा निकायों के प्रमुखों को निर्देश भी दिए। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने चीनी कंपनी हुवावे के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष टेरी हे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। मंत्रालय में हुई बैठक में अध्यक्ष टेरी हे ने कहा कि नेपाल डिजिटल परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरण में है और इसके लिए हुवावे के पास आवश्यक तकनीक, अनुभव और संसाधन है, इसलिए सहयोग किया जा सकता है। इस पर मंत्री तिमल सिन्हा ने कहा कि नेपाल ने सभी व्यावसायिक गतिविधियां पारदर्शी, स्वच्छ और उत्तरदायी होनी चाहिए तथा बिचौलिया प्रणाली को स्थान न दिया जाए और नागरिकों की आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर काम किया जाए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि मास्को क्षेत्र पर किया गया हमला कीव पर किए गए रूसी हमले का जवाब था। उन्होंने आज पत्रकारों से बात करते हुए खास तौर पर कीव पेचेसर्क लावड़ा का जिक्र किया, जिस हमले में आग लग गई थी। उस हमले में कीव के 5 लोग की मौत हुई थी। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह जून के हमलों को जवाब देगा और चुपचाप नहीं बैठेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर यूक्रेन जलेगा तो आपका मास्को भी जलेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने टेलीग्राम संदेश को दोहराते हुए रूस से युद्ध समाप्त करने की अपील भी की। हालांकि उनके अनुसार रूस के राष्ट्रपति ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं दिखा रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने पश्चिमी देशों से रूस पर प्रतिबंधों का दबाव और बढ़ाने का आग्रह किया। यह एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार है जब मास्को की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा से विनियोजन विधेयक 2083 बहुमत से हुई पारित। समानता और पारस्परिक हित के आधार पर संधि समझौते करने की नीति होने की बात पर राष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने दी जानकारी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा की केंद्रीय समिति को 151 सदस्यीय बनाने के लिए सचिवालय द्वारा विधान संशोधन। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित और प्रसारित न करने के लिए विज्ञापन बोर्ड का निर्देश। और जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन का मास्को पर सबसे जोरदार हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: सादा खाना 100 रुपया, मटन खाना 200 रुपया। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। टेलिने मजाले चलाउने
3: *1415# डायल गर्नुहोस्।
6: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
7: झन्डु आयुर्वेद,
8: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झन्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
7: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
8: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
7: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसिनको समेत सुविधा छ।
8: झन्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
9: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
10: नागरिक लगानी कोष।
11: नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुरोध। यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सङ्घ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ।
12: सुशासन प्रवर्धनमा आम नागरिकसँगै सामाजिक स्वयंसेवी सङ्घ संस्थाहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ।
13: त्यसैले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन गर्न स्वयंसेवी नागरिक संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।
12: नागरिक संस्था आफू पनि जवाफदेही र पारदर्शी बनौ र अरूलाई पनि आफू जस्तै बन्न प्रेरित गरौ।
13: नेपालमा सुशासनको पहल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य।
14: धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा वर्गीय हिसाबले कोही कसैलाई पनि भेदभाव नगरौं।
15: परस्पर सामाजिक एकतामा रहौं र बसौं। यसले हाम्रो सामाजिक मर्यादा जोगाउँछ अनि अग्रणी विकासमा साथ सहयोग बढाउनेछ।
14: जनहितका लागि रेडियो नेपाल।
16: त्यसलाई त म कहाँ छाड्छु र, मैले जानेछ, भेटौँ न पो।
17: ओहो दिदी, नमस्ते है। नमस्ते।
16: नमस्ते। ओहो, वकिल बाबु पो आउनु भएछ।
17: अनि यति धेरै रिस चाहिँ कोसँग हो?
16: कोसँग हुनु नि, त्यही पल्लो घर कि बोक्सीसँग नि। त्यसैले त मेरो छोरालाई बिरामी बनाए कि।
17: लौ हेर, बोल्नै नहुने कुरा पो बोल्नु भयो त। बोक्सीको आरोप लगाएर महिला विरुद्ध गरिने क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई दण्डित गर्न बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसुर र सजाय ऐन 2072 निर्माण भई कार्यान्वयन समेत भइसकेका छ।
16: झन्डै मबाट ठुलो गल्ती भएको।
18: जानी राखु कोही कसैलाई अन्धविश्वास र शङ्काको भरमा बोक्सी भनेमा वा आरोप लगाएमा मात्र पनि कानुनले दण्डित गर्छ। कोही बोक्सी हुँदैनन्, सबैलाई मानवताको व्यवहार गरौं, कानुनको पालना गरौं।
19: जनचेतनाका लागि रेडियो नेपाल

ऐसा नहीं कि राह में रहमत नहीं रही, पैरों को तेरे चलने की आदत नहीं रही। ऐसा नहीं कि राह में तेरे रहमत नहीं रही, पैरों को तेरे चलने की आदत नहीं रही। कश्ती है तो किनारा नहीं है दूर, अगर तेरे इरादे में बुलंदी बनी रही। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आप सबके प्यार व मिठास परे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में, और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र, और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्रावधिक मित्र पुष्परत्न वज्राचार्य जी। दोस्तों, मीडियम वेव 576, 648, 684, 792, 810 और 1143 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ एफएम बैंड 9800 और 103 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np और www.onlineradionepal.gov.np और साथ ही www.psbnepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं, और इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं, तो जो कार्यक्रम को लाइव नहीं देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, तो उनसे आग्रह है कि मधुरिमा हिंदी को लाइक और फॉलो करें ताकि कार्यक्रम शुरू होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लाइव वीडियो के साथ जुड़ जाएं और अपने मन की बात लाइव कमेंट के जरिए साझा कर पाएं। और आप यदि किसी कारणवश लाइव न भी देख पाएं तो बाद में भी इसे आप मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर देख सकेंगे। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बहुत से नए मित्र रेडियो नेपाल के साथ जुड़ें और मधुरिमा के इस बड़े परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, हर गुरुवार रात 10 बजे के निज समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज बारी है आपके प्यार और मिठास भरे फोन कॉल्स की। कार्यक्रम में हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 01421 और 01426। और अगर नेपाल से बाहर के श्रोता है तो उन्हें डायल करना होगा +97714211721 और 411736। दोस्तों, कार्यक्रम में फोन के जरिए जुड़ने और अपनी सुमधुर कविता, गजल और शेर व शायरी अपने दोस्तों के साथ साथ तमाम श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए डायल करें 01421 या 01421736 और इस कार्यक्रम को बनाएं और भी मजेदार। कार्यक्रम की सांगीतिक शुरुआत करते हैं इस मधुर गाने से। इस गाने की फरमाइश गुड्डू बानिया जी ने नवलपरासी से की थी और उन्होंने कहा था कि भजन एक जो है स्तुति राम की, भगवान राम की। तो इसी से कार्यक्रम का आगाज करते हैं सांगीतिक, सुनते हैं ये गीत।

0: जी
1: ठीक है।
0: हाँ सुनाए कुछ।
1: तो हम एक थोड़ा सा भजन प्रस्तुत करते हैं।
0: जी इरशाद।
1: है खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सभी है तेरी खूबियों का असर।

0: अच्छा।
1: बहुत खूब बैद्यनाथ जी, बहुत बढ़िया गाते हैं आप सच में।
0: हाँ जी, हाँ।
1: और ये भजन, लेकिन भजन भी अच्छा था, ये मैंने सुना नहीं था पहले, ये
0: नहीं सुने थे।
1: ये किसने गाया हुआ है, इसका डिटेल बता सकते हैं?
0: सोनू निगम ने गाए हुए हैं ये गीत।
1: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया भजन आपने सुना, कभी सुनेंगे इसको मधुरिमा कार्यक्रम के माध्यम से भी। कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे?
0: हाँ जी, एक गीत मैं प्रस्तुत करेंगे, फरमाइश करेंगे
1: जी। कौन सा?
0: अभी गर्मी का मौसम है ना, तो हमें श्रोता के लिए एक गीत सुना दीजिए ना
1: जी। कौन सा?
0: एलो रे ले लो बाबू पीलो नारियल पानी।
1: ले लो रे ले लो बाबू पीलो नारियल पानी, वाह।
0: एलो रे ले लो बाबू पीलो नारियल पानी, इस गर्मी में दिल की अपनी प्यास बुझा लो।
1: अच्छा, ले लो रे बाबू पीलो
0: पीलो नारियल पानी।
1: पीलो नारियल पानी, क्या बात है। आपने यूनिक गाने की फरमाइश, ये भी गाना मैंने सुना नहीं है।
0: ये पुराने गीत है,
1: पुराना गीत है ना।
0: हाँ जी, एलो बाबू फिल्म का गीत है, लाता ने गाई हुई है।
1: क्या बात है, जानकारियां भी रखते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया वैद्यनाथ जी।
0: धन्यवाद।
1: और ये थे वैद्यनाथ चौधरी जी, और आज सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, लिखना भी खुद पड़ रहा है और प्राविधिक पक्ष भी इधर देखना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी आज हाँ खटक रही है रमिता जी की कमी। तो अब हम गाने की ओर चलना चाहेंगे, और कामरान राशिद जी ने सिवान बिहार भारत से फोन के जरिए इस गाने की फरमाइश की थी, तो अब सुनेंगे उनकी फरमाइश पर ये गीत।
2: ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गाना आपने सुना फिल्म एक फूल दो माले से, जो कि सन 1969 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार है प्रेम धवन और संगीतकार रवि, और इस गाने की फरमाइश कामरान राशिद जी ने सिवान बिहार भारत से की थी। और फिर से खुश होता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुरा में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: बोल रहा हूँ
0: जी, माफ करिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सुरखेत से दिल बहादुर
1: चौधरी।
0: चौधरी जी, कैसे हैं चौधरी जी?
1: ठीक बा,
0: ठीक बा। और सुरखेत के क्या हालचाल हैं? हाँ जी, और हालचाल बताने के बजाय ये सीटी बजा गए हैं, मेरा मतलब प्राकृतिक कनेक्शन कट हो गया प्राकृतिक रूप से, तो दिल बहादुर चौधरी से पूरी बात नहीं हो पाई। दोस्तों 9800 और 103 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो नेपाल से अभी आप सुन रहे हैं हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम मधुरिमा, और कार्यक्रम के ऑफिशियल पेज मधुरिमा हिंदी के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं। तो आप सबसे फिर से निवेदन है कि मधुरिमा हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी यही सलाह दें। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी महीने के हिसाब से पहले और तीसरे गुरुवार को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं आपके फोन कॉल्स, तो बाकी श्रृंखलाओं में कार्यक्रम की रौनक बढ़ाते हैं आपके प्यार भरे पत्र और खूबसूरत कमेंट्स। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि पोस्ट बॉक्स और ईमेल के जरिए खूबसूरत पत्र भेजने के साथ साथ मधुरिमा हिंदी के फेसबुक पेज पर रचनात्मक कमेंट्स, जैसे कि शायरी, जोक्स, कविता आदि तो लिखे ही, साथ ही अपना पता भी जरूर लिखें, खासतौर पर तब जब आप गाने की फरमाइश कर रहे हो। और फिर से कुछ होता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
2: नमस्ते, नमस्कार सर, हम नॉन परासी से बोल रहे हैं, डॉक्टर राय थारू।
0: और डॉक्टर साहब कैसे हैं?
2: हम तो एकदम ठीक ठाक है सर, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी मजे में हैं। और नौलपरासी के क्या हालचाल हैं?
2: नौलपरासी में बहुत गर्मी है सर।
0: गर्मी है ना?
2: हाँ, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: हाँ, ये तरह की समस्या ही है, अभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तो अलग से है ही, तो बच के रहें, गर्मियों से बच के रहें, थोड़ी सावधानी बरतें जी। और कुछ पेश करेंगे कार्यक्रम में?
2: एक छोटा सा गाना पेश कर दे रहे हैं सर।
0: गाना पेश कर देना जी, इरशाद सुनाएं।
2: लोग जहाँ पर रहते हैं इसी जगह का वो घर कहते हैं, हम

0: हैं, हम इस घर में रहते हैं, इस प्यार का मंदिर कहते हैं। धन्यवाद सर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे डॉक्टर जी?
0: हाँ, एक गाना क्रोधी फिल्म का गाना, क्रोधी चल चमेली बाग में
1: झूला झुलाऊंगा, चल चमेली बाग में झूला झुलाऊंगा, है ना?
0: मेवा खिलाऊंगा।
1: अच्छा, क्या खिलाऊंगा?
0: मेवा खिलाऊंगा सर।
1: क्या बात है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय जी हमें फोन करने के लिए।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार। और ये थे डॉक्टर राय जी, बड़े सीधे इंसान लगते हैं बातचीत से तो, और होंगे भी। अब हम फिर से गाने की ओर चलेंगे, और अब देखिए डॉक्टर राय जी अभी भी आए और उन्हीं की फरमाइश सीरियल में है, क्रम में है, तो अब हम उन्हीं की फरमाइश पर सुनेंगे जो पिछले फोन वाली श्रृंखला में उन्होंने की थी। सुनेंगे ये गीत।

0: 1988 में बनी फिल्म मुलजिम से ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में। इसके गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार बप्पी लहरी और इस गाने की फरमाइश डॉक्टर राय जी ने नवलपुरा से की थी। और कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मुद्रिमा में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: हेलो, राम कृपाल ठाकुर, जलेश्वर वार्ड नंबर 12।
0: राम कृपाल जी, बहुत काफी दिनों के बाद आपने फोन किया, कहीं भूल तो नहीं गया था हमें?
1: अब फोन दो सप्ताह से लगभग नहीं करता, कितना भी मैंने लगाता लेकिन नहीं लग रहा था, हम क्या करें,
0: इसलिए नहीं लग रहा।
1: आज किसी तरह पशुपतिनाथ का कृपा हुआ और आप लोग का सिंह मित्र का लग गया।
0: चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, और आपको भी और मुझे भी, कि आपसे बातचीत करके बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। राम कृपाल जी, और कैसे हैं, स्वस्थ हैं?
1: स्वस्थ है, किसी तरह गर्मी में जी रहे हैं, काम होता है तो जाते हैं, नहीं तो चुपचाप घर पर बैठे रहते हैं, क्या करें।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी गर्मी से बचने की बहुत जरूरत है, सरकार भी चेतावनी और सुझाव जारी करती रहती है अक्सर, तो गर्मी से थोड़ा बचे। आप उम्रदराज भी हैं थोड़े से, तो घर में रहें, ज्यादा इधर उधर जाए ना, पानी वानी पिए जी।
1: जिला अघन से चलेगा, सब साल में चले जाएंगे
0: जी। फिर ये बात फिर से बताया, हमने सुना नहीं।
1: अघन से हमारा 70 चलेगा सर, उम्र।
0: अच्छा अच्छा, उम्र 70 हो जाएगी आपकी
1: जी, अघन में, अघन में,
0: आने वाले मार्गशीर्ष में जी, अघन में
1: जी।
0: चलिए, काफी उम्र दराज है बिल्कुल, और इस जोश के साथ इस उम्र में भी करते हैं, ये जिंदा दिली जो है ये हमें बहुत प्रभावित करती है आपकी, और बहुत मजा आता है आपसे बातचीत करके जी। कुछ पेश करना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: पेश क्या करें, जब जब जब आपका याद आता है तो मेरा दिल चूर हो जाता है, जब आपका याद आता है तो दिल मेरा चूर हो जाता है, कि कब आपसे मिलन हो, कि कम से कम जिंदगी भर हमारी बात आपकी बात याद रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे रामकृपाल जी?
1: गाना सर आप ही का पसंद है, जो गाना सुना दीजिएगा,
0: कोई भी गाना सुना दो। चलिए, ये इस आज़ादी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए, ऐसे ही फ़ोन करते रहें, और भगवान आपको स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहें, जब तक हैं इस धरती पर स्वस्थ रहें, स्फूर्ति से भरे रहें जी। और अब फिर से गाने की ओर चलना चाहेंगे, नंदन मिश्र जी हैं इमारुल ललितपुर से, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: ये गाना आपने सुना फिल्म खानदान से, जो कि सन 1979 में रिलीज हुई थी लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसके गीतकार हैं नक्श लयालपुरी और संगीतकार खयाम। और फिर से कुछ होता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुमेह में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: हम वीरेंद्र प्रसाद सिंह से।
0: वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी
1: बरदंगा मोहरन से।
0: कैसे हैं वीरेंद्र जी?
1: ठीक है, अभी तो धरान में है।
0: अच्छा, धरान के क्या हालचाल है?
1: अभी तो पूरा गुरुं गुरुं कर रहा है, बारिश आने वाला है।
0: बारिश आने वाला, चलिए बारिश आएगा तो थोड़ी बहुत राहत तो मिल जाएगी गर्मी से।
1: हाँ, राहत तो मिलेगा, गर्मी था, अभी तो ठंडा हवा चल रहा है और पूरा मेघ गरम गुरुं कर रहा है।
0: अच्छा, बादल छाए हुए हैं।
1: बादल भी लगता है भारी बारिश आएगा क्या।
0: अच्छा, और गरज भी रहे हैं, तो चलिए कुछ और ना करें, बारिश कर दे और मौसम को थोड़ा सा ठंडा कर दे।
1: हाँ
0: जी, और कुछ पेश करेंगे कार्यक्रम में?
1: पेश क्या करेंगे, एक गीत सुना दीजिए।
0: एक तो गीत सुनाएंगे आप?
1: जिगर फिल्म का लोग बरसों से रहा हो पे जीते अपने हाल में, वो गाना गीत नहीं है?
0: लोग बरसों जुदा हो गए जीते, हाँ है, बिल्कुल है।
1: लोग बरसों जुदा हो पे जीते है, नहीं एक गाना है?
0: बिल्कुल गाना है, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है, एक पल एक दिन, यही ना?
1: हाँ, एक पल एक दिन, वो गाना
0: एक दूजे के बिन।
1: हाँ, वही तो सुना दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए।
1: ठीक है,
0: और ये हैं, ये थे वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी बरदंगा मोरंग से। और फिर से हम गाने की ओर चलेंगे और हम कार्यक्रम के अंत के करीब भी आते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम एक दो गाना और सुनेंगे। उमेश कुमार शाही जी ने थानकोट काठमांडू से इस गाने की फरमाइश की है, और जैसे कि मैंने पहले कहा था ऑफलाइन, जब हम हालांकि फेसबुक पर हमारे श्रोता सुन रहे थे, कि आज सबके सब गाने जो हैं वो मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उन्हीं पसंदीदा गीतों में से एक और कलेक्शन आ रहा है उमेश कुमार शाही जी की फरमाइश पर थानकोट काठमांडू से। सुनते हैं ये गीत।

0: सन 1973 में बनी फिल्म ब्लैकमेल से ये गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसके गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जानंद जी। और फिर से कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुका, हालांकि उनसे हम बहुत कम समय तक बातचीत कर पाएंगे क्योंकि कार्यक्रम का अंत में आ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुमेह में। कौन बोले कहाँ से?
1: जी जी बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।
0: जी कैसे हैं सर?
1: जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपका बात सुनकर, श्याम कृपाल जी का बात सुनकर मुझे बहुत उत्सुक हुआ फोन लगाने के लिए, फोन भी लग गया। जी
0: जी राम पुकार रहा है जी ना?
1: जी राम पुकार रहा है जी, दीप हीरो
0: थर से।
1: जी
0: ओ खांसी हो रही है, आप स्वस्थ तो है ना?
1: जी जी ठीक है, ठीक है जी।
0: और क्या पेश कर रहे हैं कार्यक्रम में?
1: हम तो यही कहेंगे, एक ने जन्म दिया एक ने पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया, यही फिल्म हो, यही गाना हो।
0: कौन सा? फिर से बताया जरा।
1: एक ने जन्म दिया एक ने पाला कन्हैया, तो किसको कहेगा मैया,
0: कन्हेरे कन्हैया तो किसको कहेगा मैया, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, बिल्कुल है ना? हाँ ये आपने अच्छे गाने याद दिलाया हमको। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया,
1: एक ने पाला एक ने जन्म लिया।
0: जी जी जी जी इस गाने को हम जरूर सुनवाएंगे। इस गाने की फरमाइश आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ये गाना बहुत पहले सुना था लेकिन हाँ ये दिमाग में था नहीं और आपने याद दिला दिया। और सब बढ़िया है राम पुकार जी?
1: जी यहाँ तक आप लोगों की कृपा से हम बहुत अच्छे हैं जी।
0: चलिए हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इसी तरह जोश और खरोश के साथ कार्यक्रम सुनते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे राम पुकार राय जी, एक और बुजुर्ग जो हमारे मधुरिमा कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं और इनसे आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, बड़ी खुशी होती है जब इनसे बातचीत हो पाती है हमारी। तो और हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं लेकिन कार्यक्रम से विदलने से पहले हम एक गाना जरूर सुनाएंगे। और कहना चाहते हैं दोस्तों, कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें, साथ ही अपने पत्र में शेर व शायरी, कविता, गजल, जोक्स भी जरूर शामिल करें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634, ईमेल पता madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। और अब हम सुनेंगे हीना झाजी की फरमाइश पर, बाफल से हैं ये, काठमांडू से, ये गीत चुपके चुपके से, जो कि सन 1975 में रिलीज हुई थी लता मंगेशकर की आवाज में। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार सचिन देव बर्मन। और इसी गाने को रखते हुए आज की मधुरिमा श्रृंखला से प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न वज्राचार्य जी के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहें रेडियो नेपाल, नमस्कार, शुभरात्रि।